नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गुरु का शब्द बाण कैसे हमारे भीतर के मैं यानी अहंकार को शांत कर देता है, लेकिन जब अहंकार मरता है तब क्या होता है? तब एक बड़ा चमत्कार होता है, शिष्य को एक नई आँख मिलती है जिसे कबीर अनंत लोचन कहते हैं। आज का एपिसोड गुरु की उसी असीम कृपा और उस दिव्य दृष्टि के बारे में है जो हमें सच और झूठ का फर्क समझाती हैं। श्रोताओं, हम दुनिया को अपनी इन दो आँखों से देखते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि इन आँखों की एक सीमा है। ये आँखें केवल वही देखती हैं जो सामने हैं, लेकिन जो इन आँखों से नहीं दिखता उसे दिखाने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। आज के दोहे में कबीर ने अनंत शब्द का 4 बार प्रयोग किया है और हर बार इसका अर्थ और गहरा हो जाता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार।

दिव्य दृष्टि या प्रज्ञा चक्षुओं को खोल दिया जो अज्ञान की नींद में सोई हुई थी। जब तक ये आंखें बंद रहती हैं, हम संसार को टुकड़ों में देखते हैं। तेरा मेरा, ऊंच नीच, लाभ हानि, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा से ये आंखें खुलती हैं, हमें अनंत दिखावन हार यानी उस विराट सत्य, उस ईश्वर या उस ब्रह्मांडीय चेतना के दर्शन होने लगते हैं जो हर जगह व्याप्त हैं। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि गुरु की यह कृपा कोई सांसारिक लेन देन या बाहरी मदद नहीं है, बल्कि यह तो आवरण का हट जाना है। गुरु ने शिष्य पर कोई बोझ नहीं डाला, बल्कि उसके भीतर के बोध को आजाद कर दिया है। यह एक ऐसी खिड़की का खुलना है जिससे शिष्य अपनी ही आत्मा के अनंत आकाश को पहली बार देख पाता है। दर्शन की भाषा में कहें तो गुरु हमें दृष्टि देते हैं, केवल दृश्य नहीं। दृश्य तो बदलते रहते हैं, पर गुरु की दी हुई दृष्टि स्थायी होती है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि गुरु का यह कार्य कोई एहसान या बोझ नहीं है, बल्कि यह तो सत्य का अनावरण है। गुरु तो बस उस पर्दे को सरका देते हैं जो सदियों से हमारी आंखों पर पड़ा था, ताकि हम उस अनंत सत्ता को देख सकें जो हमेशा से हमारे ही भीतर थी। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपनी दृष्टि छोटी कर लेते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या हम केवल वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, या हमारे पास वह तीसरी आँख अर्थात विवेक है जो सच को देख सकें, समझ सकें? क्या आपके पास ऐसा गुरु है जो हमें इस काबिल बना सकें कि हम इस अनंत जीवन की सुंदरता को देख सकें? दृष्टि बदलती हैं तो दुनिया बदल जाती हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि के धनी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। है कोई तैयार? तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। Nobody is ready। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज है और ये यहां ही कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है? तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्य ज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है इसके बारे में आगे विवेचन है। माउली कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांसे। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में, तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग। जे खड़ांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है उनके अंदर, व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है? खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खल नायक रहता है। खल नायक क्या है? दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें है, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक, सिर्फ नायक है और उसमें जो खल नायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है, उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है? जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है। इसलिए सुर और असुर, जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है?
गाना अच्छा नहीं लगता, भले उसकी आवाज अच्छी है लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है, किसके सुर में गाना चाहिए, जो भगवंत है उसका सुर जो है उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मजा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मजा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खलांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता खल तुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा अगर उसे अंदर उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे क्लास में कुछ खराब चीज है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो ये शब्द बहुत अच्छा है, मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल, अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अंदर कुछ भरना चाहिए नहीं तो खालीपन महसूस होगा और ये खालीपन जो है एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए, अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रति भाड़ो, सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म और दुष्कर्म, उसके डेफिनेशन बहुत आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत कौन है, सत चित आनंद, जो परमात्मा जो है वो भगवान जो है उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूं तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है, जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है उसमें जागर रहता है, जगाना है देवताओं को, जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा, और ये सत्कर्म जो है तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए, सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए, मन रमता है, मन में खुशी होती है, ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं, अगर मैं खुशी से करूं इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज बॉडी, हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल, ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है, बॉडी तो है शरीर है
लेकिन अंदर जो बीइंग मीन सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है। हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है, खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज़ जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुअलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। हेंसेल की, जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है, कि बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीजन है कि इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी सप्रेस्ड होगी तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900 केमिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, दैट ऑल्सो विल हैव अ इफेक्ट।
0: जैसे शिवानी, विल इट इंस्पायर मी मोर कि जब मुझे पता चले कि ये सब कुछ हो रहा है कि मैं रिजॉल्व करूँ?
2: या आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आजकल बहुत अवेयरनेस है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, कि बहुत सारे कुछ एक महीने या कुछ एक साल से हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जम चुके हैं, तो हम एक अलग डाइट को लेते हैं, कुछ दिन अलग निकालते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं।
0: ना
2: व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट। क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमीडिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑल टुगेदर,
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक ये सारा जो गंध था वो मेरे शरीर से निकल गया। अब इसी तरह जो सारा गंध मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूँ तो हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ। आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी। तो लेट्स स्टार्ट डिटॉक्सिफाइंग द माइंड, डिटॉक्सिफाइंग द सोल।
1: एंड दिस इज नो मोर नेसेसरी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो तो मृत्यु के बाद चले जाएंगे, कि यहाँ जो टॉक्सिन्स आपने भर के रखे हो दूसरे जन्म में भी आप कैरी ऑन करने वाले।
0: फिर हम वो कहेंगे कि पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है ये सब कुछ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग।
1: हाँ, और दिस कैन बी अ पावरफुल मोटिवेशन। अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, फादर के प्रति उसको बड़ी हेट्रेट थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे। लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भी गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया। वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति। एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया, उससे ऊपर कहते नहीं नहीं हो सकता है। फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना, तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे। फिर नेक्स्ट सेशन हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री, मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हैट्रेट को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा। तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया।
0: एक्चुअली वो रिवेंज और हैट्रेट, उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं।
2: सी हम लोगों को छोड़ सकते हैं, सपोज मेरा आपके साथ चीट, आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया, चलो लेट मी से कि देयर इज नो अदर सोल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफरत को छोड़ दिया? उस नफरत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई। इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन, बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन, सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड। कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ, एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र है अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द माइंड इज डूइंग एवरीथिंग।
0: एक्चुअली हर चीज में रिजेंटमेंट, जो ट्रस्ट ना करना,
2: सो इट्स नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट द माइंड। देखो सपोज माय बॉडी इज टॉक्सिक, चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स, मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माय माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, हर स्फीयर पे मन है। इस पे टॉक्सिन्स अगर है मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डैमेज एवरीवेयर। फिर मैं हर एक से नाराज होता रहूंगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कुलीग से, हर एक से नाराज होता रहूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है।
0: वो मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने जमाने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे, सी आई थिंक हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं। डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की सचिव शिवानी ने, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट, अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व, कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई एम नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू, it just comes.
2: It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is very easy.
0: We don't want to forgive.
2: अब मैं क्यों नहीं forgive करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे, यू नो कितना ज्यादा हम
0: इस बारे में हो जाएंगे फिर।
2: अगर मैं ही बार बार माफ करती रहूं तो वो तो फिर से, चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं, सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूं, माफ कर दूं, तो ये तो हर बार करते जाएंगे, तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान, एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माय नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी। बहुत सारे भाई बहने हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डन पास्ट, हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था, वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी, तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ। And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40+. She's 40+. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है। She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person जिसने ये किया. She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं. गलती किसकी थी इसमें? मेरे पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां भेजा तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी इज कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 years नाउ. रिजल्ट आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही. कितनी इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती है. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही. फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 years से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होंगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
0: आई थिंक डॉक्टर पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया, तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
1: नहीं, हम अपने डैमेज तो सोचे ना. जैसे शिवानी बेन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए. भाई यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहां तो सिज़ोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड. आज दोनों सिज़ोफ्रेनिक है. तो देखो, उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
0: माफ करना क्यों जरूरी है?
2: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो, जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड, तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, दैट इज़ योर एनर्जी. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज़ की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. आई कम नियर यू एंड आई मूव अवे. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है नॉट वेरी कम्फर्टेबल इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, कहेंगे इनका ऑरा बहुत भारी है, इनकी वाइनो बहुत भारी भारी है ये. कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. तो इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटीफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी पड़ा, एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन. बहुत कुछ है जीवन में और, लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कंप्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, the world will be beautiful for me. There was another lady, she was abused when she was a child. Today she's 35 plus. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused and ek din wo program mein baithi thi, live program mein, and humme us pe commentary kar rahe the ki let go, jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, आज हम उनको जाने देते हैं. आफ्टर द प्रोग्राम शी गॉट अप एंड सेड, 30 years के बाद आज उस व्यक्ति को जाने दिया. उस एक इंसिडेंट की वजह से शी डिड नॉट गेट मैरिड, लोगों से वो दूर हो गई. शी दैट हेट पीपल, उस एक एक्सपीरियंस की वजह से. लेकिन थोड़ी देर बैठी, उसके डैमेज को समझा, शी सेड आई लेट हिम गो टुडे. जीवन परिवर्तन हो गए, टुडे शी इज अ डिफरेंट पर्सन. सो हम ही खुद को डैमेज करते, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रेमेंडस पावर दैट वी हैव.
1: रियली नो, दिस इज पावरफुल. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है. और एक इम्पोर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए, उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वांट टू राइज अबाउट दैट,
0: तो मैं अपने आप को तो माफ करूं कम से कम,
1: नहीं उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे। तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए।
2: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद। It doesn't have to come back on my mind. That is maaf karna na. Maaf means वो बात बार बार बार बार मेरे mind में चलती रहती है, वो thoughts create होते रहते हैं। Maaf karna need not mean कि मैं उनके साथ जाकर best of friends बन जाऊँ। Maaf karna is not कि मैं उनसे रोज बातें। Maaf karna just means वो मेरे चित पर अब नहीं है।
0: वो मेरे thoughts में ना आए, मैं उनके वो जो feelings थे वो ना। But is it possible? कैसे कर सकते हैं? मेरे हाथ में नहीं होता ना। See again when it okay, I create, but then वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ।
2: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना, सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊँ, एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ। एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, yes, that person has done what damage, बाकी नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स, और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है। कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन, मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में, परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है। जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस, बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ, दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ। आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया, पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से, लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज़ किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, relationships का, profession का नुकसान मैं कर रही हूँ। This is how I will have to keep talking to myself and come out of it.
1: और कुछ powerful examples भी याद करो। Graham Stein का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं, तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था। तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए।
0: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा,
2: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा, शी चेंज्ड हर डेस्टिनी। वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे, इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। नाउ दिस लेडी, शी इज लॉस्ट ऑल हर थ्री फैमिली मेम्बर्स, शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन, शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल, शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी। आप वो सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते हो, यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड। दैट्स द पावर, क्रिएटिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर, not only holding back my past. This is the power we have.
0: In fact,
1: you remember such example, aur isme bahut bada healing power hai, kehte I forgive you, ye teen shabdon mein bahut zabardast shakti hai bas.
0: Yeah, ek me ko ek aur bhi aspect lena hai, rejection ka, jo aapne kaha ki ye to situations wo thi ki log chale bhi gaye aur logon se maine apna nata bhi nahi rakha, because I was rejected, ya mujhe dhoka hua. There are times when I have been rejected, but I'm waiting. I know somebody जो एक relationship में break हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है, अब वो rejection है या जो भी, the girl is still waiting, you know, वो wait, और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे रिजेक्ट किया, किस कारण किया, क्या, और वो जो वो वेट, तो आज भी पूरा जीवन, दो साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा ही, और आना वेट भी, और तो ये इसको कैसे हील करे, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है, बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है, और अब्सेशन उसको कैसे हैंडल
1: करे। अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जांपल में वो अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है, तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है।
0: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में, कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है,
2: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, एक थॉट है, विच इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है ये थॉट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपने आप को वही थॉट देते जाते हैं। हमारे पास इतनी लंबी लंबी ईमेल आती है, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, सेज हु, सेज मी, चेंज व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा। लेकिन आई लव टू गिव माई सेल्फ दिस थिंकिंग कि मैं इसलिए दर्द में हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो जब तक आप अपने आप को वो थॉट दोगे, आपको वही फीलिंग आएगी, आपकी वो वेट पीरियड चलती रहेगी। चेंज योर थॉट पैटर्न, आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, यू नो, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है। इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी। ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन।
0: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से, क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा
2: है। नहीं, और खुद पर बहुत गुस्सा आता है,
0: हाँ, पता? कि हम क्या कर रहे हैं?
2: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन, कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को ज़बरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वॉन्ट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको ज़बरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। इसी तरह से रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हटाना है, यू विल हैव टू ब्रेक अवे, थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, बस 2 मिनट के लिए बात कर लूं, तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ, यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। सोचे, डिसाइड करें, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली, एवरी वन हैज द पावर टू डू इट, इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे। हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आस पास किसी और को हो रहा होता, आप उनको क्या थॉट्स देते? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं, वही थॉट्स अपने आप को देने हैं।
1: एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है, ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसको छोड़ नहीं पा, और कुछ संभावनाएं हैं, वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं। आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं। और एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, ख़त्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। इवन बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास तो ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है, नहीं, जहाँ भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया, वो सोचती थी मैं सुसाइड करूँगी, ये लड़के के वहाँ कहीं नहीं जाऊँगी, थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और उसे मुक्त हुई, आकर बड़ा अच्छा हुआ वो। तो ये सब आप लोगों ने मेहनत की, एफर्ट की,
0: पावर से, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग, हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा, शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे, तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन इज
2: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट। आई कैन शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स हैं, जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it, and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people, ki look at the power every soul has. Jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai, वो कर लेती है. एंड एवरी टाइम हम किसी से ऐसे मिलते हैं, इट री इन्फोर्सेस कि जो अपने ऊपर करेगा उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा.
0: डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, आज फिर एक बार हम अपनी ही थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं. यू नो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है.
2: दर्द को हम, दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है.
0: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशन चेंज करके स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ, पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी ज़िंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है. आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है. बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. ओम शांति. ओम

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गुरु का शब्द बाण कैसे हमारे भीतर के मैं यानी अहंकार को शांत कर देता है, लेकिन जब अहंकार मरता है तब क्या होता है? तब एक बड़ा चमत्कार होता है, शिष्य को एक नई आँख मिलती है जिसे कबीर अनंत लोचन कहते हैं। आज का एपिसोड गुरु की उसी असीम कृपा और उस दिव्य दृष्टि के बारे में है जो हमें सच और झूठ का फर्क समझाती हैं। श्रोताओं, हम दुनिया को अपनी इन दो आँखों से देखते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि इन आँखों की एक सीमा है। ये आँखें केवल वही देखती हैं जो सामने हैं, लेकिन जो इन आँखों से नहीं दिखता उसे दिखाने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। आज के दोहे में कबीर ने अनंत शब्द का 4 बार प्रयोग किया है और हर बार इसका अर्थ और गहरा हो जाता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,

यार। इस दोहे से कबीर जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महानता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, गुरु की महानता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उनका उपकार भी अनंत है। सबसे बड़ा उपकार लोचन अनंत उघारिया, गुरु ने शिष्य की वे अनंत आँखें अर्थात दिव्य दृष्टि या प्रज्ञा चक्षुओं को खोल दिया जो अज्ञान की नींद में सोई हुई थी। जब तक ये आँखें बंद रहती हैं हम संसार को टुकड़ों में देखते हैं, तेरा मेरा ऊंच नीच लाभ हानि, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा से ये आँखें खुलती हैं हमें अनंत दिखावन हार यानी उस विराट सत्य, उस ईश्वर या उस ब्रह्मांडीय चेतना के दर्शन होने लगते हैं जो हर जगह व्याप्त हैं। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि गुरु की यह कृपा कोई सांसारिक लेन देन या बाहरी मदद नहीं है, बल्कि यह तो आवरण का हट जाना है। गुरु ने शिष्य पर कोई बोझ नहीं डाला, बल्कि उसके भीतर के बोध को आजाद कर दिया है। यह एक ऐसी खिड़की का खुलना है जिससे शिष्य अपनी ही आत्मा के अनंत आकाश को पहली बार देख पाता है। दर्शन की भाषा में कहें तो गुरु हमें दृष्टि देते हैं, केवल दृश्य नहीं, दृश्य तो बदलते रहते हैं पर गुरु की दी हुई दृष्टि स्थायी होती है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि गुरु का यह कार्य कोई एहसान या बोझ नहीं है, बल्कि यह तो सत्य का अनावरण है। गुरु तो बस उस पर्दे को सरका देते हैं जो सदियों से हमारी आँखों पर पड़ा था, ताकि हम उस अनंत सत्ता को देख सकें जो हमेशा से हमारे ही भीतर थी। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपनी दृष्टि छोटी कर लेते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या हम केवल वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, या हमारे पास वह तीसरी आँख अर्थात विवेक हैं जो सच को देख सकें, समझ सकें? क्या आपके पास ऐसा गुरु है जो हमें इस काबिल बना सकें कि हम इस अनंत जीवन की सुंदरता को देख सकें? दृष्टि बदलती हैं तो दुनिया बदल जाती हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि के धनी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। है कोई तैयार? तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। Nobody is ready। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है वो

बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज है और ये यहाँ ही कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है, तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है इसके बारे में आगे विवेचन है। माउली कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में, तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग, जे खड़ांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है उनके अंदर, व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है, खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खल नायक रहता है। खल नायक क्या है, दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें है, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ एक सिर्फ नायक है और उसमें जो खल नायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है, उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है, जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है। इसलिए सुर और असुर, जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है, अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है, गाना अच्छा नहीं लगता। भले उसकी आवाज अच्छी है लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है, सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है, किसके सुर में गाना चाहिए, जो भगवंत है उसका सुर जो है, उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मजा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मजा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खलांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता, खल तुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा, अगर उसे अंदर, उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे ग्लास में कुछ खराब चीज है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो यह शब्द बहुत अच्छा है, मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल, अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांजी व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अंदर कुछ भरना चाहिए नहीं तो खालीपन महसूस होगा और ये खालीपन जो है एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए। अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म और दुष्कर्म, उसके डेफिनेशन बहुत आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत कौन है, सत चित आनंद, जो परमात्मा जो है वो भगवान जो है उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूं तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है। जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है उसमें जागर रहता है, जगाना है देवताओं को, जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा। और ये सत्कर्म जो है तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए, सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए, मन रमता है, मन में खुशी होती है। ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं, अगर मैं खुशी से करूं इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज बॉडी, हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल। ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है, बॉडी तो है, शरीर है, लेकिन अंदर जो बीइंग मीन्स सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है। हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है, खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जे खड़ांजी व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ और एक बार फिर जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीख रहे हैं, जिसे हम लाइफ स्किल्स कह रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला में बहुत कुछ नया सीखा अपने बारे में और देखा कि किस तरह से माइंड पावर, थॉट पावर जो है वो ना सिर्फ मेरे रिश्तों को, मेरे पूरे जीवन को, बल्कि मेरे बॉडी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ठीक करने में हमारी बहुत मदद करता है। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं किए हैं हमने, जो हमारे बैकलॉग में चल रहे हैं, बार बार बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करें। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सारी बातें तो आपने हमें हमारी बॉडी के बारे में अवेयर करके बताई, ये भी बताया कि एक एक थॉट, एक एक फीलिंग कैसे विजुअलाइज करके हम उसको हील कर सकते हैं। बात करते हैं उन मुद्दों की जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमने पहले भी इसी श्रृंखला में बात की थी कि वो नहीं छूटती हैं, वो जो एक दर्द है, एक गुस्सा है, एक हर्ट है, मतलब वो थॉट आते ही, वो घटना सामने आते ही वो सब कुछ सामने आता है और बहुत मुश्किल होता है पास्ट से निकल पाना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कम आउट?
1: सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इफेक्ट कितनी पावरफुल हो रही है बॉडी पर। आज कई बार कोई इस प्रकार के इमोशंस हो, इमीडिएट हार्ट अटैक आ सकता है। नहीं, हैंसेल की जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत काम किया है, उनका कहना है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, उनका कारण है कि वह किसी को माफ नहीं कर पाते और वह जो फीलिंग है उसके कारण उनको इस प्रकार की बीमारी भी हुई। तो जब जब भी वह फाइल खुलती है तो सारी नेगेटिव इफेक्ट, न केवल मन पर, आपने जो कहा मन पर तो इफेक्ट हो ही रही है, लेकिन बॉडी पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। यह भी एक पावरफुल रीजन है कि इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना चाहिए। जितना उससे ऊपर उठेंगे तब ही आप पूरे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकेंगे।
0: तो क्या करें, मतलब हर बार यही आ जाता है सवाल कि क्या करें, ये रिजॉल्व करें और कैसे करें, उस पर आते हैं। पहले ये बताएं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आई थिंक समवेयर वी नीड टू नो कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, मुझे धोखा दिया था, चीट किया था, बिजनेस में किया था, रिश्ते में किया था, वो मुझे याद आता है और मुझे सारा गुस्सा फिर आता है, लेकिन आता है, उसके थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मेरी बॉडी पर उसका असर क्या पड़ रहा है?
1: तब यही जो टॉक्सिक इमोशंस का हमने समझा था वो सारी इफेक्ट होती है, क्योंकि फिर से सिंपैथेटिक अराउजल होगा, बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी, एंडोक्राइन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम, दैट विल अफेक्ट यू। आपकी जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी भी सप्रेस्ड होगी तो इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा, वो ब्रेन के 900 केमिकल्स विल गेट डिस्टर्ब, दैट आल्सो विल हैव अ इफेक्ट।
0: जैसे शिवानी, विल इट इंस्पायर मी मोर कि जब मुझे पता चले कि ये सब कुछ हो रहा है कि मैं रिजॉल्व करूं?
2: या आई वाज जस्ट थिंकिंग, आजकल बहुत अवेयरनेस है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, कि बहुत सारे कुछ एक महीने या कुछ एक साल से हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जम चुके हैं, तो हम एक अलग डाइट को लेते हैं, कुछ दिन अलग निकालते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। व्हाट अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन हियर? इतनी टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट की हुई हैं इतने सालों से, कई बार तो जैसे बचपन से हमने पकड़ी हुई हैं वो बातें, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे अगर, तो व्हाट मिरेकल्स इट कुड क्रिएट। क्योंकि जब भी कोई अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इमीडिएटली फील करता है कि मैं रिजुविनेट हो गया, इट्स लाइक अ न्यू बॉडी ऑल टुगेदर,
0: बिल्कुल।
2: क्योंकि इट्स लाइक पॉइजन, इट्स लाइक ये सारा जो गंध था वो मेरे शरीर से निकल गया। अब इसी तरह जो सारा गंध मैंने यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लीन कर दूँ तो हमें हम कितना हल्का महसूस करेंगे यहाँ, आई विल फील लाइट, और जितना पकड़ कर रखा है आई फील वेरी हैवी। तो लेट्स स्टार्ट डिटॉक्सिफाइंग द माइंड, डिटॉक्सिफाइंग द सोल,
1: एंड दिस इज नो मोर नेसेसरी, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो तो मृत्यु के बाद चले जाएंगे, कि यहाँ जो टॉक्सिन्स आपने भर के रखे हो दूसरे जन्म में भी आप कैरी ऑन करने वाले।
0: फिर हम वो कहेंगे कि पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है ये सब कुछ, बिकॉज़ दिस इज व्हाट वी आर कैरिंग।
1: हाँ, और दिस कैन बी अ पावरफुल मोटिवेशन। अभी भी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट था, वो करीब 25 साल का लड़का होगा, फादर के प्रति उसको बड़ी हेट्रेट थी, क्योंकि फादर ने बचपन में उसको बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे। लोअर मिडिल क्लास एरिया था कि भाई गलत संगत में आ जाएगा, और उसके कारण उसमें डर निर्माण हो गया। वो अभी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ा हेट्रेड था फादर के प्रति। एक दो सेशन के बाद मैंने उसको कहा कि तुमने किया, उससे ऊपर कहते नहीं नहीं हो सकता है। फिर एक दिन बोलता है डॉक्टर साहब करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ। फिर और एक सेशन में मैंने कहा देखो अभी आपने नहीं किया ना, तो अगले जन्म में भी तुम इसको ले जाओगे। फिर नेक्स्ट सेशन कि हाँ हाँ नाउ आई एम फ्री, मुझे इससे मोटिवेशन मिल गया कि अगर अभी मैं फ्री नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी इस हैट्रेट को, इस रिवेंज को मैं ले जाऊंगा। तो मैंने उसको पूरा छोड़ दिया।
0: तो वंडरफुल थिंग, रिवेंज और हैट्रेट, उससे निकलने के लिए हम लोगों को छोड़ते हैं, व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, जिंदगी मतलब किधर किधर किधर घूमते हैं।
2: सी हम लोगों को छोड़ सकते हैं, सपोज मेरा आपके साथ चीट, आपने मुझे किया, मैंने आपको छोड़ दिया, चलो लेट मी से कि देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, मुझे आपसे अलग होना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन क्या नफरत को छोड़ दिया? उस नफरत को तो फिर भी पकड़ के रखा ना, तो आपसे विड्रॉ हो गई। इट वॉज नॉट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल, इट वॉज अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम द इमोशन, बट वी विड्रॉ फ्रॉम पीपल, होल्ड ऑन टू द इमोशन, सो द डैमेज इज मल्टीफोल्ड, कि मैं बार बार बार बार वही चिंतन कर रही हूँ। एंड फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो शरीर का बेनिफिट है, लेकिन माइंड अगर टॉक्सिक है तो वो माइंड तो हर काम कर रहा है ना, हर रिश्ते में जा रहा है, हर प्रोफेशन में, मेरे हर फील्ड में वो टॉक्सिक माइंड वर्क कर रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन का हर क्षेत्र ही अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द माइंड इज डूइंग एवरीथिंग।
0: एक्चुअली हर चीज में रिजेंटमेंट, जो ट्रस्ट ना करना,
2: सो इट्स नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट द माइंड। देखो सपोज माई बॉडी इज टॉक्सिक, चलो मेरा शरीर ठीक नहीं चलेगा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे रिश्ते तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि मैं बॉडी डजंट डू एनीथिंग इनटू द रिलेशनशिप्स, मैं अपने करियर में तो फिर भी थोड़ा ठीक चल लूंगा, बट माय माइंड इज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, हर स्फीयर पे मन है, इस पे टॉक्सिन्स अगर है मीन्स देयर इज गोइंग टू बी डैमेज एवरीवेयर। फिर मैं हर एक से नाराज होता रहूंगा, घर में लोगों से, प्रोफेशन में अपने कोलीग से, हर एक से नाराज होता रहूंगा विदाउट रियलाइजिंग कि जहर तो यहाँ भरा हुआ है।
0: वो मतलब वो एक जहर की जो एक वो नहीं कैरी करते थे पुराने जमाने में कि अंगूठी में डाल के रखते थे, सी आई थिंक हर बार एक ड्रॉप उसका वो डाल देते हैं। डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की सचिव शिवानी ने, कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी तो टेक्निक्स हम समझ गए, ऐसी डाइट, अब इसको करें कैसे? नहीं होते रिजॉल्व, कितनी कोशिश करते हैं, इट जस्ट यू नो इट्स लाइक आई विल नॉट से इट कम्स, बट आई क्रिएट, कंटिन्यू टू क्रिएट इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू, it just comes.
2: It's because we don't want to forgive. Forgiving is not difficult. Forgiving is very easy.
0: We don't want to forgive.
2: अब मैं क्यों नहीं forgive करना चाहती? क्योंकि गलती उनकी इतनी बड़ी थी, दर्द मुझे इतना हुआ था, तो क्यों मैं फॉरगिव करूं? अगर मैं फॉरगिव करती हूं तो फिर वो और वो ही करेंगे, यू नो कितना ज्यादा
0: हम इस पर जस्टिफाई हो जाएंगे फिर।
2: अगर मैं ही बार बार माफ करती रहूं तो वो तो फिर से, चलो कुछ होती हैं जीवन की बड़ी बातें जिसमें यू नो विच कैन बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन छोटी छोटी बातों में ले लेते हैं, सारा दिन बातें हो रही हैं जो हम कहते हैं मैं अगर हर बार इसको बात को हल्का कर दूं, माफ कर दूं, तो ये तो हर बार करते जाएंगे, तो औरों को सुधारने के लिए अपना नुकसान, एंड फिर वो इतना संस्कार पक्का होता जाता है, इट बिकम्स माई नेचर टू होल्ड थिंग्स अगेंस्ट पीपल, नॉट बींग एबल टू फॉरगिव बिकॉज आई से उनकी गलती इतनी बड़ी थी। बहुत सारे भाई बहनें हमें मिलते हैं हु आर कैरिंग बर्डेंड पास्ट, हुआ है जीवन में, इट कुड बी एनी थिंग। कुछ समय पहले एक बहन से मिलना हुआ जो ये टेलीविजन का प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहे हैं, और उन्होंने आकर अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो 11 वर्ष की थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक दिन अपने किसी दोस्त के घर भेजा जो अकेला था, वो अबाउट 50-year-old पर्सन था जिसकी फैमिली किसी और सिटी में गई थी, तो पेरेंट्स ने कहा वो अंकल अकेले हैं, आप आज उनके घर चले जाओ। And that person, and this girl was 11 years old. That 50-year-old man physically abused this 11-year-old girl. Today, that lady is 40+.
0: जो 11 year old girl,
2: today she's 40+. लेकिन ये 30 साल से ऊपर की जर्नी में उसने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत पकड़ के रखी है। She openly says, I hate my parents. I thought she'll say, I hate that person जिसने ये किया. She said, उससे मुझे कोई इतना लेना देना नहीं. गलती किसकी थी इसमें?
0: मेरे माँ बाप रिस्पांसिबल थे ना.
2: मेरे पेरेंट्स की जिम्मेवारी थी मेरा ध्यान रखना. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ भेजा तो पूरी गलती मेरे पेरेंट्स की. शी कैरीड दैट रिजेंटमेंट इन हर फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ. रिजल्ट आज वो एडिक्शंस में है और वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल के आ रही. कितनी इतनी नफरत मेरे अंदर भरी है कि जब तक मैं ये नहीं लेती आई डोंट फील गुड एट ऑल. नहीं तो वो माइंड में मेरे वही थॉट्स चलती रहती हैं. मैरिज हुई, बेटी है, लेकिन डिवोर्स हो गया, हस्बैंड के साथ नहीं बनी. करियर वाइज कुछ भी नहीं कर पा रही. फिजिकली भी कुछ एक एलिमेंट्स लगी हुई है. पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बना, ओनली बिकॉज 30 इयर्स से ऊपर वो नफरत पकड़ के रखी है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये रिजेंटमेंट नहीं कैरी कर सकते, इवन इफ द पास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी वेरी डैमेजिंग. चाहे कुछ भी हुआ हो, वी नीड टू फॉरगिव, क्योंकि उसी से हमारी हीलिंग होगी. नहीं तो उस बहन को देखकर मुझे लगा, देखो पूरी जीवन इस नफरत को पकड़ने की वजह से इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशन, चारों एस्पेक्ट्स पर कहीं भी हेल्दी नहीं चला.
0: आई थिंक डॉक्टर पटेल, क्यों हम फॉरगिव नहीं करते? क्योंकि शायद हम उससे पहले, उस इंसिडेंट से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन चाहते हैं. तो अब वो तो आएगा नहीं, क्योंकि लगता है वो तो खत्म हो गया. तो इसीलिए अब वो प्राप्ति तो होने वाली है नहीं, इसलिए हम फॉरगिव नहीं करते हैं. हम उसको पकड़ के रखते हैं या रिजेंटमेंट या गुस्से में रहते हैं कि वो तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो वापस नहीं मिल पाएगा जो था हमारा इतना सुंदर.
1: नहीं, हम अपने डैमेज तो सोचे ना. वैसे शिवानी बेन ने कहा, मुझे मेरे दो पेशेंट के एग्जाम्पल याद आए. भाई यहाँ तो डिप्रेशन सिर्फ हुआ है, वहाँ तो सिज़ोफ्रेनिया हुआ है. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली अब्यूज्ड. आज दोनों सिज़ोफ्रेनिक हैं. तो देखो, उन्होंने इतना उसको दिल पर ले लिया कि पागलपन आ गया. तो अगर वहीं पर माफ कर देते जल्दी से, कोई टेक्निक को अच्छे से समझ लेते, तो बीमारी नहीं होती.
0: माफ करना क्यों जरूरी है?
2: क्योंकि माफ करने से मेरी कितनी सारी हीलिंग हो गई ना. देखो, जैसे गिरीश भाई ने कहा, एक एक थॉट हमारे सेल पर वर्क कर रही है, माइंड पर वर्क कर रही है, हमारे बॉडी के हर सेल पर वर्क कर रही है. तो हेट्रेड की थॉट है ना, आई एम कैरिंग अ होल बंच ऑफ थॉट्स ऑफ हेट्रेड. तो पूरे इफेक्ट नहीं आएगा. एनर्जी है, वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होंगी. जिनसे भी मैं मिलूंगी उनको मुझसे कौन सी वाइब्रेशंस मिलेंगी? इट्स लाइक द परफ्यूम यू आर यूजिंग, That is your energy. तो अगर आपने नफरत की परफ्यूम यूज की हुई है, आपके किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा. I'll come near you and I'll move away. कई लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें लगता है not very comfortable इनसे मिलने से. कुछ हुआ नहीं, कहेंगे इनका ऑरा बहुत भारी है, इनकी वाइनो बहुत भारी भारी है ये. कुछ लोगों से आप मिलेंगे, आपको लगेगा इनसे मिलकर अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ वॉट पैकेट दे आर कैरिंग हियर. तो इसलिए आपका सिर्फ एक रिश्ता नहीं खराब होता, यू नो, जिसमें आपने वो एक्सपीरियंस किया. आप किसी भी रिश्ते को ब्यूटीफुली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, क्योंकि आपकी अपनी ऑरा बहुत भारी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीवन, ठीक है, एक हादसा कितना भी पड़ा, एक हुआ है, देयर इज लॉट्स मोर टू हैपन. बहुत कुछ है जीवन में और, लेकिन अब आगे की डेस्टिनी, इसके बाद मुझे कैसी क्रिएट करनी है, दैट्स कंप्लीटली इन माई हैंड्स नाउ. नफरत पकड़ के रखो, दिस विल बी द डेस्टिनी. फॉरगिव, the world will be beautiful for me. There was another lady, she was abused when she was a child. Today she's 35 plus. I think she's one of the most sincere watchers I have seen of this program. Ek bhi episode shayad nahi miss kiya, notes banaye, study kiya. She had been physically abused and ek din wo program mein baithi thi, live program mein, and hum us pe commentary kar rahe the ki let go, jinko bhi humne aaj din tak pakad kar rakha tha, आज हम उनको जाने देते हैं. आफ्टर द प्रोग्राम शी गॉट अप एंड सेड, 30 इयर्स के बाद आज उस व्यक्ति को जाने दिया. उस एक इंसिडेंट की वजह से शी डिड नॉट गेट मैरिड, लोगों से वो दूर हो गई, शी हेट पीपल, उस एक एक्सपीरियंस की वजह से. लेकिन थोड़ी देर बैठी, उसके डैमेज को समझा, शी सेड आई लेट हिम गो टुडे. जीवन परिवर्तन हो गई, टुडे शी इज अ डिफरेंट पर्सन. सो हम ही खुद को डैमेज करते, हम ही खुद को हील कर सकते हैं. दिस इज ट्रेमेंडस पावर दैट वी हैव.
1: रियली, यू नो, दिस इज पावरफुल. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है. और एक इम्पॉर्टेंट बात की भी, क्यों मैं माफ करना चाहता हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे कारण मेरे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए, उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ. मैं तुमको माफ नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ओके. लेकिन मेरे पर जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, एटलीस्ट आई वांट टू राइज अबाउट दैट,
0: तो मैं अपने आप को तो माफ करूं कम से कम,
1: नहीं उसको ही माफ कर, तभी वो इन्फ्लुएंस से आप ऊपर उठेंगे। तो मेरे फायदे के लिए मैं किसी को माफ कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए।
2: एंड माफ करना मतलब भी क्या, मतलब उस इंसिडेंट और उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद। It doesn't have to come back on my mind. That is maaf karna na. Maaf means वो बात बार बार बार बार मेरे mind में चलती रहती है, वो thoughts create होते रहते हैं। Maaf karna need not mean कि मैं उनके साथ जाकर best of friends बन जाऊँ। Maaf karna is not कि मैं उनसे रोज बातें। Maaf karna just means वो मेरे चित पर अब नहीं है।
0: वो मेरे thoughts में ना आए, मैं उनके वो जो feelings थी वो ना। But is it possible? कैसे कर सकते हैं? मेरे हाथ में नहीं होता ना। See again when it okay, I create, but then वो जब क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो मैं उसके वश में हूँ।
2: तो अपने आप को फिर से समझाओ ना, सी अगेन अवेयरनेस, ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं फिर अपने आप को समझाऊँ, एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, बाकी नुकसान मैं अपने कर रही हूँ। एक नुकसान उन्होंने मेरा किया, जो भी किया, बिजनेस में चीट किया, अब्यूज किया, जो एक नुकसान किया, yes, that person has done what damage, बाकी नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज चेंजिंग माई थॉट्स, और इसमें परमात्मा का प्यार और शक्ति हमें वो हील करने में मदद करता है। कोई मेरे साथ अगर ऐसा करता है, कोई भी प्रकार का धोखा, इट्स अ रिजेक्शन, मुझे एक रिजेक्शन मिलता है किसी रिश्ते में, परमात्मा से मुझे एक्सेप्टेंस मिलता है, प्यार मिलता है, तो वो मेरी हीलिंग को ईजी कर देता है। जस्ट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द प्रोसेस, बट ओनली इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ डैमेज उन्होंने नहीं किया, ये रिपीटेड करने से डैमेज मैं कर रही हूँ, दिस आई हैव टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ। आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया, क्या नुकसान किया, पैसे ले गए ना आपके, सारे पैसे ले गए लेट से, लेकिन आपके मन का, शरीर का और आपके रिश्तों का अब नुकसान कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। किसी ने आपको फिजिकली अब्यूज़ किया, फिजिकली किया ना, लेकिन अब माइंड का, रिलेशनशिप्स का, प्रोफेशन का नुकसान मैं कर रही हूँ। दिस इज हाउ आई विल हैव टू कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड कम आउट ऑफ इट।
1: और कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स भी याद करो। ग्राहम स्टेन का उदाहरण बहुत सारे लोगों ने सुना है कि जो उड़ीसा में एक फादर थे, उनको और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। तो एक साल के बाद पत्रकारों ने उनकी पत्नी को यह प्रश्न पूछा कि आपके पति और बच्चों के हत्यारों के बारे में आपके दिल में कैसी भावनाएं। तो उस महिला ने बहुत ही पावरफुल उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन मैंने उन्हें माफ कर दिया था। तो बताने में भी जबरदस्त शक्ति चाहिए।
0: तो उनका जो रख के भी क्या फायदा,
2: इट्स नॉट अबाउट क्या फायदा, शी चेंज्ड हर डेस्टिनी। वो पूरा परिवार अपना देश छोड़ के इन लोगों की सेवा के लिए आए थे, इन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। नाउ दिस लेडी, शी इज लॉस्ट ऑल हर 3 फैमिली मेंबर्स, शी कुड हैव लिव्ड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन पेन, शी इज वर्किंग टुडे विद द सेम पीपल, शी इज सर्विंग देम, शी इज हेल्पिंग देम, शी इज चेंज्ड हर डेस्टिनी। आप वो सिचुएशन को तो नहीं चेंज कर सकते हो, यू कैन गेट दोज पीपल बैक, बट यू कैन चेंज हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड। दैट्स द पावर, क्रिएटिंग माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर, not only holding back my past. This is the power we have.
0: In fact,
1: no, remember such example. और इसमें बहुत बड़ा healing power है। कहते हैं, I forgive you. ये तीन शब्दों में बहुत जबरदस्त शक्ति है बस।
0: यहाँ एक मेरे को एक और भी aspect लेना है, rejection का, जो आपने कहा कि ये तो situations वो थी कि लोग चले भी गए और लोगों से मैंने अपना नाता भी नहीं रखा, because I was rejected या मुझे धोखा हुआ। There are times when I have been rejected, but I'm waiting. I know somebody जो एक relationship में break हुआ और उसके बाद वो लड़का कहीं गया, लड़की यही है, अब वो rejection है या जो भी, the girl is still waiting, you know, वो wait, और उसके प्रति वो नफरत भी है कि मुझे रिजेक्ट किया, किस कारण किया, क्या, और वो जो वो वेट, तो आज भी पूरा जीवन, 2 साल बाद भी वो जीवन वैसा का वैसा है, और आना वेट भी, और तो ये इसको कैसे हील करें, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी एक तरह के रिजेंटमेंट में चल रही है, बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो और ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि वेट जो है वो बहुत पेनफुल है, और अब्सेशन उसको कैसे हैंडल करें।
1: भी अपोजिट है नहीं, यहाँ पर जो लेट गो करने की बात थी, हम देखेंगे इस एग्जांपल में वो अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट इतना पावरफुल है कि व्यक्ति डिटैच नहीं हो पाता है। तब अगर ये अच्छी तरह से मन को समझाए कि डिटैच होना ही मेरे लिए सॉल्यूशन है, मैंने अटैचमेंट रखा तो मेरी सुख शांति आनंद सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस कुछ भी हो जाए मुझे डिटैच होना है।
0: अच्छा, हम अगर ऑब्सेशन की बात करते हैं रिलेशनशिप में, कि वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड हो गया और दूसरा व्यक्ति चला गया है,
2: कुछ नहीं है इसमें, एक ही थॉट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, एक थॉट है, विच इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है ये थॉट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये लोग अपने आप को वही थॉट देते जाते हैं। हमारे पास इतनी लंबी लंबी ईमेल आती है, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, सेज हु, सेज मी, चेंज व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बिना हमारा जीना बंद हो जाएगा। लेकिन आई लव टू गिव माई सेल्फ दिस थिंकिंग कि मैं इसलिए दर्द में हूँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती। तो जब तक आप अपने आप को वो थॉट दोगे, आपको वही फीलिंग आएगी, आपकी वो वेट पीरियड चलती रहेगी। चेंज योर थॉट पैटर्न, आई एम अ पावरफुल सोल, मेरी लिविंग, मेरी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था उनके साथ, यू नो, बात करना, रिश्ता, वो ठीक है, बट डिपेंडेंसी नहीं है। इमिजिएटली आई विल बी एबल टू गेट बैक माई सेल्फ टू दैट डिग्निटी। ये एक्चुअली अपनी डिग्निटी को बहुत नीचे कर देना है कि एक किसी की वजह से आई एम नॉट रेडी टू लिव, आई कांट डू विदाउट दिस पर्सन।
0: इनफैक्ट उसके बारे में हम बात भी नहीं कर पाते किसी और से, क्योंकि अंदर अंदर खुद को बहुत बुरा लग रहा है।
2: नहीं, और खुद पर बहुत गुस्सा आता है, पता
0: कि हम क्या कर रहे हैं।
2: खुद से नफरत होती है कि मैं कितनी कमजोर हूँ। इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन, कि मैं इस ड्रग के बिना नहीं रह सकती, मैं इस सिगरेट के बिना नहीं रह सकती, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। तो जैसे बाकी एडिक्शन से हम अपने आप को ज़बरदस्ती हटाते हैं ना, सपोज आई वॉन्ट टू गिव अप सम एडिक्शन, मैं उसको ज़बरदस्ती छोड़ती हूँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, इट्स अ विड्रॉल सिम्टम। इसी तरह ऐसे रिश्ते में भी जो नहीं वर्कआउट कर रहा, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती हटाना है, यू विल हैव टू ब्रेक अवे। थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ में अपनी काउंसलिंग खुद करते जाएंगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करते जाएंगे, धीरे धीरे एडिक्शन ओवरकम हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, फिर बीच में कहते हैं मैं एक बार फोन करके बात कर लूं, बस 2 मिनट के लिए बात कर लूं। तो इट्स लाइक 10 दिन मेहनत किया, 10 दिन मेहनत किया, सिगरेट छोड़ा, विड्रॉल सिम्टम हुए, थोड़ी सी विल पावर आई, फिर जाके एक सिगरेट ले ली, तो आपका वो पूरा 10 दिन का एफर्ट वेस्ट हुआ। यू हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। सोचे, डिसाइड करें, यू वॉन्ट टू मूव अवे, डू इट स्ट्रिक्टली। एवरी वन हैज द पावर टू डू इट, इट ओनली डिपेंड्स आप अपने आप को कौन सी थॉट्स देंगे। हम अपने आप को ही, यही अगर आपके आस पास किसी और को हो रहा होता, आप उनको क्या थॉट्स देते? कहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जो थॉट्स आप दूसरों को देते हैं, वही थॉट्स अपने आप को देने हैं।
1: और देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो अपने आप को ये सोचो कि भी और क्या क्या संभावना है। ये एक व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसको छोड़ नहीं पा, और कुछ संभावनाएं हैं वो लिखो सचमुच, तो भी आपको मिल जाएगी कि भी और भी कई संभावनाएं हैं। आई कैन मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स, मैं कोई अच्छा प्रोफेशन कर सकती हूँ, और कोई मेरे लिए अच्छी संभावनाएं हैं। और एक बात ये बहुत समझने की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कि अगर वो अटैच ही रहे तो दुख में जीवन जिया, डिप्रेशन में जिया, बीमारियां आई, ख़त्म हो गए, और जो इससे बाहर निकल गए तो फिर उनका जीवन और बहुत अच्छा हो गया। इवन बाद में तो ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि हम इससे बाहर आ गए, अगर नहीं आते तो शायद हमारा जीवन बहुत दुखी होता। मेरे पास तो ऐसे कई प्रैक्टिकल केसेस है नहीं, जहाँ भी लड़की को कहीं अटैचमेंट हो गया, वो सोचती थी मैं सुसाइड करूँगी, ये लड़के के वहाँ कहीं नहीं जाऊँगी, थोड़ा अच्छे से उसका पीछा किया और बातें समझाई, ट्रीटमेंट की और उसे मुक्त हुई, आकर बड़ा अच्छा हुआ वो। तो ये सब आप लोगों ने मेहनत की, एफर्ट की,
0: पावर से, बिकॉज ये एक पावर है। ना सिर्फ यूथ इसमें फंस रहा है, आज मिडिल एज में जो लोग, हमने बहुत बार बात की है, ऑब्सेशन होके और खुद, जैसे आपने कहा, शर्म खुद से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, काउंसलर के पास भी नहीं जा पा रहे, तो क्या मेरे थॉट्स पावरफुल थॉट्स या मेडिटेशन इज
2: आई कैन जस्ट टेल यू के थ्रू दिस टेलीविजन प्रोग्राम लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट। आई कैन शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत बहुत बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो मैरिड कपल्स हैं, जो आउट ऑफ मैरिज रिश्तों में जुड़ चुके थे, they have overcome it, and it's an inspiration. I feel very nice when I meet such people, ki look at the power every soul has. Jo atma decide kar leti hai ki mujhe ye karna hai, वो कर लेती है. एंड एवरी टाइम हम किसी से ऐसे मिलते हैं, इट री इन्फोर्सेस कि जो अपने ऊपर करेगा उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा.
0: डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, आज फिर एक बार हम अपनी ही थॉट पावर को क्या मिरेकल देखते हैं. यू नो, ऐसे ऐसे सिचुएशंस जब लगता है कि लेट को किया ही नहीं जा सकता, हम छोड़ ही नहीं सकते, ये दर्द मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमने मतलब जीवन का एक सच मान लिया है.
2: दर्द को हम, दर्द हमें नहीं छोड़ेगा, हमें दर्द को छोड़ना है.
0: हम दर्द को छोड़ के इक्वेशंस चेंज करके स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अभी तक तो ये चल रहा था कि बाहर दर्द है उस व्यक्ति के कारण, उस सिचुएशन के कारण मैं कंटिन्यूस पेन में हूँ, पूरा टाइम मेरे मन में एक बोझ रहता है, उस बोझ को लिए जाना ही, उसको ढोए जाना ही मेरी ज़िंदगी है. लेकिन जब अपने आप को पहचानते हैं और इस शक्ति को जानते हैं कि ये मुझ में ही है, क्योंकि पहले भी मैंने ही क्रिएट किया, ये ऑब्सेशन भी उस व्यक्ति या सिचुएशन ने तो नहीं कहा था, या वो जो कुछ हुआ था वो उस वक्त का सच था, आज उस सच को बदले बहुत वक्त गुजर चुका है. आज का सच ये है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शरीर के साथ हूँ, इसीलिए शरीर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने प्रति मेरी जिम्मेदारी है. बाकी सारी जिम्मेदारियों के साथ इस जिम्मेदारी को भी देखें, अपनी ही ताकत को पहचानें, बदलाव संभव है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे. ओम शांति.